0: protect the endangered Indian wildlife. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So the Gujarat government has set up about 2 dozen bus schools for Agariya children.
1: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દીનું પેપર છે. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
0: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
2: वहां अलग अलग साहब होते हैं जो 1 से 8 तोरों को बनाते हैं और वहां अच्छे से समझाया जाता है और दर एक विषय में और यहां घड़िए और ऐसा आते विषय पे नहीं आते.
0: There are no desert schools for older children.
1: महसूस होता है कि ये इस इन बच्चों में भी कुछ आईक्यू पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते.
0: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agariyas.
3: तो पाटिया हार छाप करता नहीं हो जो पाटिया हमारे एकदम चोखा छाओ जी एक तो उड़न है असल.
4: और ये सब बैग कहाँ जा रहे हैं सर?
5: ये यूपी में एमपी में.
4: ये सब आपका है?
5: सब यहाँ से ये दीवार से वहाँ लास्ट तक मेरा है. करीब 10,000 चौरस मीटर की जगह है.
0: Hingor Bhai is one of the biggest traders in the area. He pays advances to as many as 100 families each season. For him, the storm hasn't been entirely bad for business.
5: Namak ka production kam hota hai to demand zyada rehti hai. To aaj ke samay mein demand achhi hai. Pura area dher ban jayega. Kareeb 17-18 lakh ton namak yahan banta hai.
0: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
6: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है. इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउस की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम.
0: Most Agariyas never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
6: Abhi to apne paas maan lo ek brand hai, kabhi 10 brand ho to sabke ikke thi aapke thi dono milega.
0: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay Agariyas more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
5: जो अगरिया कल्याणकारी योजना का फंड है वो सही ढंग से सरकारी मैनेज नहीं करती. यदि सरकार मैनेज करती तो उनको शिक्षण का आरोग्य का उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते.
0: Back in the desert, families like Kishan's are still waiting for help.
7: चलो हमें अपने दाबे जाइए बरोबर यहाँ मीटिंग रखेली है.
8: सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहाँ गुजरात के अंदर लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है. यही कुछ पता नहीं चलता हर बार ऐसा हर साल ऐसा होता है लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है. अब इस बार भी मीटिंग है. अब मीटिंग में हम जा रहे हैं. अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती.
9: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे ए राजा नो थयो टांडो अरे रे कैक तो नो से अमारा यासु.
0: The meeting has been organized by a group advocating for Agariya rights. Harinesh Pandya and his team have travelled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
10: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता, तो इस हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने suicide कर लिया हो. लेकिन इनका जो जिगर है, ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है community की, अगर या community पूरे रण के अंदर देखें तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास.
11: Huge loss
10: है. और अगर ठीक से पूरा अगर हमें लगता है हमारा हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान.
0: The group is calling for a disaster relief policy. similar to the compensation schemes available to Indian farmers affected by extreme